लाइया कपड़ रूप सिंगार, केहू खेर लाइया छोड़ चले घर बार। मार मलूक हाइया राजा राव के खान, चौधरी राव सदाइया जल बलिया बेमान। मनमुख

जग माहे सब जग काजल टोक सब सब जग काजल कोठड़ी तन मन दे सुआउ गुर राखे से निर्मलै शब्द निवारी पाए नानक तरिये सच नाम सिरसा पासाहो मैं हर नाम न विसरै हर नाम रतन बेसाहो गुरमुख पहुजल पचमुए गुरमुख तरे तराहो राग महला पहला घर दूजा मुकाम कर घर बैसना नित चलने का थोक मुकाम ता पड़ जानिए जा रहे ने चल लोक दुनिया कैस मुकामे कर सिदक करनी खर्च बांध्यो लाग रहो ना मैं राहो जोगी ता आसन कर बहे मुल्ला बहे मुकाम पंडित बिखाने पोथियां सिद बहे देव स्थान सुर सद गण गंधर्व सो सुर नर गण गंधर्व मुन जन सेख पीर सलाह कर कूच कूचा कर गए अवरे भी चलन हार सुल्तान खान मलूक उमरे गए कर कर कूच कड़ी मुहद के चलना दिल समझ तू पह पहुंच शब्द महे बखाणिये विरला न बूझे कोय नानक बखाने बेंती जल तल मई अल सोए अलो लख आगम कादर करन हार करीम सब दुनिया आवन जामनी मुकाम एक रहीम मुकाम तिसनु आखिए जिस जिस सस न होवे लेख असमान धरती चल सी मुकाम एही एक दिन रब चले निस सस चले तार का लख पलोए मुकाम ओही एक है नानक सच बिगोए महले पहले सतारा अष्टपदियां श्री राग महला तीजा घर पहला अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुरमुख कृपा करे भगत की जय बिन गुर भगत ना होए आपे आप भगत हीन काहे जग आया कृपा कर कृपा करे भगत की जय बिन गुर भगत ना होए आपे आप मलावे बूझे ता निर्मल होवे कोई हर जियो सच्चा साची बाणी शब्द मलावा होए पाई रे भाग हीन काहे जग आया पूरे गुर की सेव न कीनी बिरथा जन्म गुआया रहो आपे हर जग जी बंदा ता आपे बख्श मलाए जी जानते क्या बिचारे क्या को आग सुनाए गुरमुख आपे देवड़ियाई आपे सेव कराए वे कटुंबो हे लभाना चल दिया नाल न जाई सतगुर सेव गुण निधान पाया तिसकी कीम न पाई प्रभ सखा हर जियो मेरा आते हुए सिखाई पाईड़े जग जीवन दाता मनुख पत गवाई बिन सतगुर को मग नहा जाने अंधे ठोर नकाई हर सुख दाता मन ने बसया अंत गया पछताई पाईड़े जग जीवन दाता गुरमत मन बसाया आंदन भगत करे दिन राती होमे मोह चकाया जिस्यो राता तैसो होवे सचे सच समाया आपे नदर करे पहलाए गुर शब्दी विचार सतगुर सेविये सहज उपजै होमे तृष्णा मार हर गुणदाता सद मन वसै सच रखे अवतार प्रभ मेरा सदा निर्मला मन निर्मल पाया जाए नाम निधान हर मन वसै हो मैं दुख सब जाए सतगुर शब्द सुनाया हो सद बलिहारे जाओ अपने मन चित कहे अपने मन चित कहे कहावे बिन गुर आप न जाई हर जो भगत बछल सुखदाता कर कृपा मन वसाई नानक सोभा सोरत देह प्रभ आपे गुरमुख दे वड्याई री श्री राग महला तीजा होमे कर्म कमावणे जम डंड ना जंड होमे कर्म कमावणे जम डंड लागै ते न्याय जन सतगुर सेवन से उबरे हर से ती लिवलाए मन रे गुरमुख नाम ते आए पूर्व लिखया करते लिखया तिन गुरमत नाम समाए रहो बिन सतगुर प्रीति ना आवई नाम ना लागो पाओ सुपने सुख ना आवई दुख में सवै समाए
ਜੇ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਕੀ ਜੈ ਬਹੁ ਲੋਚੀਐ ਕੀਰਤਨ ਮੇਟਿਆ ਜਾਏ ਹਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਭਗਤੀ ਮੰਨਿਆ ਸੇ ਭਗਤ ਪਏ ਦਰ ਥਾਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਰੜਾਈਐ ਰੰਗ ਸਿਉ ਬਿਨ ਕਿਰਪਾ ਲਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਜੇ ਸਹੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੀਰੀਐ ਪੀ

सुखदावन त्वय प्रसाद कर ग्रंथ सुधार भूल परी लहो लेहो सुधार दोहरा

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे हुए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नव सिमरव श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याही है। जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निध आवे ताए सब थाई होए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीन हरदा ध्यान तर के बोलना जी। पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुगतियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड के सकिया देग चलाई तेग वाही देख के अमडिठ कीता तिन्हां प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान तर के बोलना जी। जिन्हां सिंह सिंघनियां ने धर्म हे सीह दिते बंद बंद कटवाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तनारियां नाल चरवाए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी सिद्ध के सां सवासां सांग निभाया तिन्हां समूह शहीदां दी कमाई

नहीं तिस करते। ओर रहो रतनागर रे जाचक जाचै नाम तेरा स्वामी, घट घट अंतर सोई रे नानक दास ताकी सरनाई, जाते बिरथा ना कोई रे। दसा पातशाह।

बेपरवाह है ना, मौज है ना, घोड़ा है ना बाज है ना जोड़ा है, ता उस बेपरवाही मौज विच फिर भी मेरे कलगिया वाले पातशाह बाजा वाले बेपरवाह दे बोल बोल रहे ने। ते जेड़े रब दे प्यार वाली रूहां हुंदियां ने जिन्हां दी सुरत विचों, हाँ जी जिन्हां दी सुरत विचों शब्द नहीं जांदा, टेकिया होया शब्द है, वह बेपरवाह हो जाते हैं, वह भी नहीं किसी की परवाह मनते। तो सतगुरु जी के अमृत बोलना है, गरीब नवाज जी कहते बेपरवाह, बेपरवाह सदा रंग हरक है, रंग विच प्रेम दे विच दुनिया तो बेपरवाह हो जाते हैं, बेपरवाह सदा रंग हरक है। जा को पाख स्वामी, जिन्ना वाले मेरा वाहिगुरु है वह कले भी रह जाते तभी बेपरवाह, क्यों मेरे वाहिगुरु निरंकार करतार ने। ता मेरे गरीब निवास सचे पातशाह धन गुरु अमरदास सचे पातशाह जी कृपा कर दे सच्चा बेपरवाह है, यो सच्चा निरंकार करतार मेरा वाहिगुरु बेपरवाह है। तिस नू तिल ना तमा, तिल मात्र तमो नहीं है, रब दे प्यारे वेरे तमो नहीं है, रजो तमो सतो गुरु का सिख जड़ा है, एदे तो हमेशा नरलेप रहिंदा है। अमृत सच्चा वरसदा गुरमुखा मुख पाए, प्रतख मुख विच गुरा गुरमुखा दे रसना द्वारे अमृत नाम दी

कर कृपा कर आया गुर कहेत अपार। वर पाया सुहागनी केवल एक मुरार, जे लोड़ है वर बालड़िए ता गुर चरणी चित लाए राम। फिर गुरु की करेगा, पति परमात्मा दयालु हो गया ना, तू ये कर्म कर ले ने, तो साहब कहिंदे सबे गुणे बख्शाए लै, वो सारे गुण गुणा जड़े ने गुरु बख्श दिंदा है, बख्श के मेले मेलन हार मिलन वास्ते समर्था रखता है, अपने नाल मिला लैंदा है। जीव रूप स्त्री उहदा ही रूप हो जाती है। नानक आखण आखी है भी आख रहे हैं, क्या जाता है वाहिगुरु जी दे शब्द नू कह, पहला भी कहा जिन्हां ने, जे ओहो जे बोल बोल ओहो जे कहने कह, जे सुन धरे प्यार जिन्हां बोलां नू सुन के तेरा पति परमात्मा नाल प्यार बन जावे। तुहानू बदल याद आ गया होना जी, जे सुन धरे प्यार सवेरे तुसीं रोज ही पढ़दे हो, मोह के बोलण बोलो हुण, मोह के बोलण जित सुन, बस बोल बोले जाण, बोल केड़े ने,

इतनी हाजिरी प्रवान करके आशीष बख्शना, भुला चुका दे खिमा करना, आशीष बख्शो सतगुर मेहर भरे आशीष ते हथ रख के सेवा लैन, आओ सारे रल के आनंद साहब।

एक ओहकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लही त्याहै श्री अंगद गुर ते अमरदास रामदासे हुए सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस जिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नौन दे आवे ताए सब थाई हुए सहाय साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई हुए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलना जी पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिना नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई तेग वाह देख के अमृत कीता तिना प्यारियां सुचारियां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी जिन्ना सिंह सिंघणियां ने धर्म हे सीह दिते बंद बंद कटवाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तनारियां नाल चरवाए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी सिदके सां सुवासां सांग निभाया तिना समूह शहीदां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां जी का ध्यान तरके बोलना जी प्रिथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावै चेतावन का सदका सर्ब सुख होए जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छया रियायत देग देग फतेह ब्रिद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खाल

दान विसाह दान प्रसाद दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब नी दे दर्शन इशनान चौकिया झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार होवे बोलना जी। सिखां दा मान नीवा मत उची मत पादे राखे आप अकाल पुरख वाहिगुरु अपने पंथ दे सदा सहाय दतार जी ओ श्री ननकाणा साहिब समूह गुरधामा दे खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नू बख्शो निमाणिया दे मान निताणिया दे ताम नियोटिया दी ओढ़ने आसरिया दे आसरा धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ आप जी दे हजूर अरदास बेनती है जी। आप जी ने कृपा रहमत की है आप जी की पावन हजूरी वे शाम दे सुंदर दीवान सजे हैं सजे हुए दीवाना वे गुरबाणी की कथा विचार कीर्तन छे पौड़ियां आनंद साहब का जाप होया कृपा करनी जी समुचिया सेवावां निभाउंदिया होया भुल चुक की खिमा बख्शना पढ़ी सुनी बाणी कथा कीर्तन का भाव आईया संगतां दे हिरदे ते वसाउणा सब दियां दर हाजरियां तिल फुल पे ढावां प्रवान करनियां दरों करो नाम दान चढ़दी कला की दात बख्शनी परिवारों में सुख शांति कारोबारों में वादे करने जेलों में बंद गुरसिखा की रिहाई चढ़दी कला करनी अपने प्यारे खालसा पंथ की चढ़दी कला करनी बख्शा खजानों विचों कड़ा प्रसाद की देख सज के हाजिर है करी पाक साल सोज पितरा हलाव भोग हर राज आप जी का सीत प्रसाद जो छके नाम वाहिगुरू वाहिगुरू जपे श्री मुखबाग की बख्श करो सही प्यारे मेल जिन्हें मिले आप जी का नाम चेतावे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दोहरा आग्या पही अकाल की तब चलायो पंथ सब

सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। तो दया गए।

जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। ज्यादा आवाज। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहे

गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु

संग मोहे उधारो सुखमनि सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना के मन विश्राम रहाओ प्रभ कै सिमरन गर्भ ना बसै प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै।

भारी हर को नाम खिन माहे उधारी अनक पुनः चरण करत नहीं तरा हर को नाम कोट पाप पर हरा गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख नेरे सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जप तुए सुखिया लाख करोरी बंद ना पराय हर का नाम जपत निसुतराय अनक माया।

प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जय प्रसाद शक्ति अमृत खाहे तिस ठाकुर को रख मन माहे जय प्रसाद सुगंध तन लावे तिसको सिमरत परम गत पावे जय प्रसाद बसे सुख मंदिर।

निप्रसाद बोले अमृत रसना, जिप्रसाद सुख सहजे बसना, जिप्रसाद हस्त कर चले, जय प्रसाद संपूर्ण फले, जय प्रसाद परमगत पावे, जय प्रसाद सुख सहज समावे। ऐसा प्रभु त्याग बरकत लागो गुरु प्रसाद।

ब्रह्म है समानी, साधक संग अगोचर मिला, साधक संग सदा प्रफुला, साधक संग आवे बस पंचा, साध संग अमृत रस पंचा, साध संग में सबकी रेन, साधक संग मनोहर बैन, साधक संग न कथ मुहता, साध संग अस्तित्व मन पावे, साधक संग माया ते पिन, साध संग नानक प्रभु सुप्रसन्न।

ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते उचा मन अपने सबते नीचा ब्रह्म ज्ञानी सहजन भय नानक जिन पर व्याप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी जीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर भया ब्रह्म ज्ञानी ते काश बुरा न पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन दे मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान

ब्रह्मज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइये, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जाइये, ब्रह्मज्ञानी को खोजे में सर नान, ब्रह्मज्ञानी या परमेश्वर। ब्रह्मज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्मज्ञानी का सगल मन माहे, ब्रह्मज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्मज्ञानी को सदा आदेश, ब्रह्मज्ञानी का कथे ना जाए अदा खियर, ब्रह्मज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्मज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्मज्ञानी की गात ब्रह्मज्ञानी जाने, ब्रह्मज्ञानी का अंतरा पार, नान ब्रह्मज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्मज्ञानी सब

सगल त्यागे दुष्ट का संग, पंते भिन्से सगला परम कर पूजे सगल पार ब्रह्म, सा संग पापा मल खोवे तिस भगवती की मत उत्तम होवे, भगवंत की टहल करे नित नीत, मन तन अर्पय विशन प्रीत, अर्घे जन हृदय बसावे, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे। सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है, राम नाम आत्म में शुद्ध है, राम नाम सारस पीवस पंडित के उपदेश जग जीव है, हर की कथा हृदय में सावे, सो पंडित फिर जो न आवे, वेद पुराण सिमृत बुझे मूल, सुखम में जाने स्थूल, चौवरना को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौवरना में जपे कहु नाम, जो जो जपे तिसकी गत होए, सासंग पावे जन कोए, कर कृपा अंतरतारे, पास ब्रेद मुक्त पात्र को तारे, सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम, काहू जुगत कित ना पाइये, धर्म नानक तिस मिलाए, जिस लिखिया तुर कर्म, जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत रामदास, आत्म राम तिस

नहीं भी हो, तैसा स्वर्ण तैसी सुमाटी, तैसा अमृत तैसी भी खाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा राजान, जबरताए साई जुगत नानक पुर कहिए जीवन मुक्त, पार ब्रह्म के सगले ठाऊं, जिद जिद कर राखे तैसा ते नाऊं, अपे करन

करा सो सेवक को किस डरा, जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया, सोदत सोदत सोदत सीजिया गुरप्रसाद तब जिया, जब देखो तब सब किश मूल, नानक सो सुखम सोई असूल, न कि जन्मे न किश मरे आपन चलत आप ही कर, आपन जाम दृष्ट आन दृष्ट आज्ञा गारी तावरी सब श्रेष्ठ, आपे आप सकल में आप अनुग जुगत रज थाप उथाप, अविनाशी नाय किश खंड धारण धार्य हो ब्रह्मंड, अलख अपे पुरख प्रताप आप जपायता नानक जाप, जिन प्रभ जाता सो सो बावन सकल संसार दुरे तन मंत, प्रभ के सेवक सकल उदारम प्रभ के सेवक दुख बिसार, नापे मेल ले कृपाल गुर का शब्द जपे निहाल, उनकी सेवा सोई लागे सुनु कृपा करे बट भग, नाम जपत बामे विश्राम नानक तिन पुरख उत्तम करमान, जो किश कराय सो प्रभ कै रंग सदा सदा बस हर संग, सह सुभाय हो वह सो होय करना हार पछाण है सोय, प्रभ का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना, जिससे उपजे तस्माहे समाये वे।

मनसा पूर्ण सरना जो जोकर पाया सोई हो घरन भरन जाका नेत्र भोर तिसका मंत्रणा जाने होर अंदरु मंगल सत जाके सर्व दोख सुनिए घर ता के राज में राज योग में जोगी तब मैं तबेसर ग्रस्त में भोगी त्याए त्याए भक्त सुख पाया नान तिसपुर का कने अंत न पाया जाकी लीला की मितनाहे सकल देव हारे अब गाहे पिता का जन्म के जाने पूत है सकल प्रोही अपने सूत है।

नानवे सो सेवक सा संभार अपने जन का प्रता ढाके अपने सेवक की सरवर राखे अपने दास को दे बढ़ाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आपत राखे था कि गदमित गोय ना लाखे प्रभु के सेवक को कोना पहुंचे प्रभु के सेवक ऊंचते ऊंचे जो प्रभु ने सेवा लाया नानक सो सेवक दया दस प्रगटाया निकी गिरी में कल राखे भसम करे लश्कर कोट लाखे जिसका सास ना काट त्याप ताको राख देख रात मारस जतन करत वह पांत जिसके करता फिर से जात मारे न राखे अबर न कोय सर्व जिया का राखा सोए काये सोच करे रे प्राणी जब नानक प्रभु लाख बिडाणी बारंबार बार प्रभु जबिये पिये अमृत मंत्र पियाए नाम रतन जन गुरमुख पाया तिस किश वरनाई दृष्टा।

ज्ञानकेतानुसारष्टपदि सन्दनामिल गर्वभिचारेक सेवरनाम आधार अवरुभाव समीत विसारो चरण कमल हृदय में उतारो कर्णकार सोप्रभ सम्राथ दृढ़कर गहो नामरवत्थ एतन संचो होबो पगमन संदना का निर्मल मंद एक आस राखो मन माहे सर्वरोग नानक मिट जाहे।

अपनी भक्ति लाए। अष्टपदी जाचक जन जाचै प्रवधान कर कृपा देवो हर नाम सा जना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी सरदापुर सदा सदा प्रभु के गुण गावो सा प्रभु तमे ते आवा

सुखोय मान भिक्षे साध चरम तोय भक्त जना के मंदरंग विरागु पावे संग एक भस्त दीजे कर मया गुर प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही ना जाए नानक रहया सर्व समाए प्रभक्षांत दीन दयाल भगत वशल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व घटान।

फिर जब अष्टपदी जब अकारे कशना दृष्टेता पापुन जब कहते होता जब तारी अपन सुन समात बैर विरोध के संग कमात जब इसका वर्ण चिन्ह जापत हर सौ कौ किसे व्यापत जब अपने आप आपार ब्रह्मता मोह का किसोवत परम अपन के लावर तीजा नान करने हार न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनिता बंद मुगत कहो किसको गनी जब एक हर अगम अपार तब नर्क सुर कहो कौन आउतार तब निर्गुण प्रभ सह सुभाय तब शिव शगत कहो कित ठाए जब आपे आप अपनी जो तराय तब गमन ने डर गमन कत डराय अपन जल ताप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख अपने आसन तय जन्म मरण कहो कहा विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होय जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्रगुप्त

राष्ट्रपति आप कथे आप सुन्ने हारा पेका विस्तार जात भावे श्रेष्ठ उपाय अपने भाणे लय समाए तुम ते भिन्न नहीं किशोया अपन सू सब जगत परोहे जागो प्रभ जीव आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्थी तत् का बेता नानक सगल सृष्ट का जेता जी जंत्र सब ताके हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राके तस गोए ना मारे सो मुआ जिस मनो विसार है तिस तज अब्र कहाँ को जाए सबसे रेख निरंजन राय।

मधुपुरी अमृत जाके दृष्ट दर्शन पेखत उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तन सेवा सेवक परमानंदर जामे पुरख प्रधान जिसमन बस

जूनी सैभं गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच सोच।

निरंकार असंख जाप असंख भाव असंख पूजा असंख तप ताव असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहै उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार

तुद पावै साही भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूर्ख अंधकोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गल वड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल पख खाहे,

देवी सोहन सदा सुवारे गावे इंद इदासन बैठे देवते अंदर नाले गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे गावन पंडित पढ़ निरखी सिर जुग जुग वेदा नाले गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा मच पयाले गावन रतने उपाए तेरे अड़सड़ तीर्थ नाले गावे जोध महाबल सूरा गावे खानी चारे गावे खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे

नामे संभति स्वरूपे प्रभंगी प्रमाते संभति विभूते कलंकं बिना ने कलंकी स्वरूपे नमो राज हृदयेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे नमो राज हृदयेश्वरं परम विद्धे नमो सहत्र पाने नमो अत्र माने नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेक्षी।

दान चलेंगे। वीर पार बड़े बरियार अविचार है सार की धार पछैया तोरत देश मलिंद मवासन बातें गजान के माल मिलैया गाड़े गड़ान के तोड़न हार सुबात नहीं चक चार लवैया साहिब श्री सबको सिर नायक साहिब श्री सबको सिर नायक जाच कनेक सो एक दिवैया दानव देव फनेंदन साचर भूत पवे।

फिटे फेड़ करे मन झूठे चुली परे कहो नानक सच तिहाइए सुच होवे ता सच पाइए पौड़ी चिते अंदर।

कोट पराध हमारे खंडहो अनक विधि समझावहो। हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम्हें आपन बिरद रखावहो। तुमरे शरण तुम्हारे आशा तुम्ही सजन सहेले राखो राखन हार दयाला नानक करके गोले। तुमरे शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सहेले राखो राखन हार दयाला नानक करके गोले। वाहिगुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

जागत पिखारी फिरत है सबको दाता राम, कहो नानक मन सिमरते है पूर्ण हो वह काम।

गाई माल राग कौशक संग लाई मारू मस्त अंग में वारा प्रबल चंड कौशक ओ बहारा खाओ खट आओ पहोरा नद गाई अष्ट माल कौशक संग लाई पन आयो हिंडोल पंच नार संग अष्ट सुत उठा तान कलोल गायन तार मिलावही ते लंगी देव करी आई बसंती संदूर सहाई सरस हिरी लै पहर जा संग लाई पंचों हर जा सुरमानंद पास कर आए चंद्र बिम मंगलन सोहाय सरस बान ओ आहे बनोदा गावै सरस बसंत कमोदा अष्ट पुत्र मैं कहे सवारी पुन आई दीपक की बारी का छेली पट मंजरी टोडी कही अलाप कामोदी ओ गुजरी संग दीपक के थाप कालंका कुंतल और रामा कमल कुसुम चंपक के नामा गौरा औ कांदरा कल्याणा अष्ट पुत्र दीपक के जाना सब मिल श्री राघव गावै पंचो संग बरंगन लावै भैरारी करनाटी धरी गवरी गावै आसावरी तह पाछ सिंध भी अलापी श्री राग स्यो पंचों थापी सालू सारग सागरा और गोंड गंभीर अष्ट पुत्र श्री राके गोंड कुंभ हमीर खष्टम मेघ राग वै गावै पंचो संग बरंगन लावै सोरठ

जो प्रभु को मिलबो चाह खोज शब्द मे राज करेगा खालसा या की रहे कोई। कोई। सब मिलेंगे।

तुद सब कुछ मैनो सौंपया जा तेरा बंदा लक्ष्मी तोट न आवई खाए खर्च रहंदा लख चौरासी मेदनी सब सेव करंदा ए बैरी मित्र सब केते आन हमंग हमंदा लेखा कोई न पुछई जा हर बख्शंदा आनंद भया सुख पाया मिल गुरु गोबिंदा सभी।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

ऐसे तू ऐसा माँ दो हम ऐसे तू ऐसा हम मैले तुम उज्जल करते हम निर्गुण तू दाता हम मैले तुम उज्जल करते हम निर्गुण तू दाता हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे तू सर्व कला का ज्ञाता हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे तू सर्व कला का ज्ञाता माँ दो हम ऐसे तू ऐसे।

खेन खेन राम नाम गवाह मुख तार कृपा मिले गुरुदाते अर नानक भक्त महाराम जय श्री।

हस्तरथ सब पवनते जय तणि भूमन चतुरांगा संग न चालो इनमें कछु है उठ सदायो नंगा हर कै संत प्र प्रीतम प्रभु के ताके हर हर गाय नानकिया मुख सुख आ गए मुख उजल संग संतन कह पाई है जय श्री महला पंजमा घर तीजा दो पदे को अंकर सतगुरु प्रसाद देव संदेश रो कहो प्रह के कहो विषम पई मैं बहुत सुनते कहो सुहागन सही ओ रहा।

0: स्वस्वामी तुम निकट बचानो रूप रेख ते न्यारा पावन नाम जगत में हर को कबन नाई संपारा नाने सन पर जगबंधन राखो बिरद तुहारा
1: सुन प्यासे दूसरा सचित्व अंत नीत

नौ रहो तुम कहियत जगत गुरुस्वामी हम कहियत कलयुग के कामे अन पंचन मेरो मन जो बिगार्यो पल पल हर जीते अंतर पार्यो जत देखो तर दुखी राशि अजो न पति आय निगम पैसाखे गौतम नार उमाप स्वामी श्री सुतरण सहस पग गामी इन दो तन खल बद करम हार्यो बड़ो निराज अजो नहीं हार्यो कह रविदास का कैसे कि जय बिघ्न रघुनाथ शरण का केले जय एक ओंकार सत नाम करता पुरख निरभउ निर्वैर

पहला हार बिन रह ना सके मन मेरा मेरे प्रीतम प्राण हार प्रभ गुरु मेले बहु न पव जल फेरा रहाओ मेरा ही अर लोच लगी प्रभ केरी अर नैनो हर प्रभ हेरा

हरहृदय मन तन मीठा लागा मुख मस्त भागा चंगेरा लोह विकार जना मन लागा हर विसरिया बुरख चंगेरा ओए मन मुख मूड़ा ज्ञाने कहिए तन मस्त भाग मंदेरा बबेक बुद्ध सतगुरु ते पाई गुरु ज्ञान गुरु प्रभ केरा

सदगुरु प्रसाद संतन अवर न काहु जाने बेपरवा सदा रंगार क्या राजा को पाख स्वामी राहो ऊच समान।

निकटाने निर्भय रहे लेख्याय नानक हर मनवाने टोडी महला पंजमा हर बिस सदा कुआरी हर बिसरत सदा कुआरी तंको धोखा कहाँ व्यापै जंको ओट तुहारी रहो बिन सिमरन जो जीवन बल नाम सर्व जैसे अरदारी नावखंड को राज कमावै अंत तला गोहारी गुण निधान गुण तने गाये जंको कृपा तारी सो सुखिया धन्य उस जनमा नानी तिस बलिहारी टोडी महला पंजमा कर दूजा चौप देख अंकार सतगुरु प्रसाद तायो रे मन दैद तायो माया मगन स्वाद लोभ मोहयो तिन प्रव्याप बुलायो रहो हर कथा हर जस साध संगत स्यों एक मोहत नाये मन लायो भिक्षो भेख रंग सुम को पार ग्रह जो हन जायो चरण कमल सो भाव न किन्नो न सत पुरख मनायो धावत को तावे बहुपाते ज्यो तेले बलद परमायो नाम दान स्नान न कियो एक निमख न कीरत गायो नाना चोट लाए मन तोख्यो न बुझे अपनायो पर उपकार न कबहु की है नहीं सदगुरु सेव त्यायो पंच दूत रस संगत गोस्त मतवारु मतमायो करो बेन तिसा संगत हर भगत वचन सुन आयो नानक पाग परयो हर पाछे राख लाद अपनायो टोडी महला पंजमा मानक बिन बुझे बिरथा आया अनेक राज स्वीकार बहु करता ज्यो मृत को डाया राव ताए ताए किरपन शर्म किनो एकत्र करी है माया दान पुण्य संतन सेवा कति काज ना आया करिया भरण सा वारी से जा काम थाट बनाया संग न पायो अपने परते पेग पेग दुख पाया सालो दिन समझूरी करता तो है मूसल छराया

पंजवा प्रभु जी को नाम ने सदारे जी प्राण सुख इस मन को बर्तन ए हमारे रहो नाम जात नाम मेरे पत है नाम मेरा परिवार है नाम सखाई सदा मेरा संग हर नाम को निस्तार है भिखे बिलास कहत वो तेरे चलतना कछु संगार स्मित नाम नानक को हर नाम मेरा भंडार है टोडी महला पंजवा

आप हाथ दे राखा जने अपने हर होए माई बाप जे जंतो होए मेहरबाना दया धारी हर नाथ नानक सरण परे दुख भंजन जाकावट प्रताप टोडी महला पंजवा स्वामी सरण परे दरबारे कोट अपराध खंडन के दाते दुश्मन कौन उधारे राहो खोजत खोजत बहु प्रकारे सर्व अर्थ विचारे साध संग परमगत पाइये माया रच बंध हारे चरण कमल संग प्रीत मन लागे सुर जन मिले प्यारे नानक अनंद करे हर जप जप सगले रोग निवारे टोडी महला पंजवा कर तीजा चौप देख अंकार सतगुरु प्रसाद हां हां लपटोरे मुड़े कछु ना थोरी तेरो ने सुजानी मोरी राव अपने राम नचिनो खिनो आ जो पराई सो अपनी मनुआ नाम संगे सो मन नाम बसायो छुड़ जाय बाहु जितलायो सो संचयो जत भुगत सायो अमृत नाम तो सा नहीं पायो काम क्रोध मोह कोप भरिया गुरु प्रसाद नानक को तरिया टोडी महला पंजमा

दृढ़ायो। हर हर जावता वर्त ने महारते आयु गोसल सब के माँ आचार बिहार जात हर गुनिया महान कीर्तन हर सुनिया।

रूड़ो मन हर रंगो लोड़ा गाली अरनी ना होए राहो हो टुंडेंदे दर्शन कारण बेथे बेथे बेका गुर मिल परम गवाया है। ए बद भाई मैं साधु कनो लेख लिखे उतर माथा है ए बद नानकार नैन आलोए टोटी महला पंजवा गर्व के लड़ो मुड़ो हियो रे यो महाराज रे मायो डेर न्याय मोह पाक्यो रे राहो कणो कणो कणो सदलोड़े बिन लैने कैठे पायो रे महाराज रो गाथ वाउ सोले पढ़ियो ने पागड़ो पाए संजोयो रे सुन मन सीख साधु जन सगलो थारे सगले प्राचद मिट्यो रे जाको लैणो महाराज रे गाठड़ियो जन नानिंगर पास ना बौड़ियो रे टोटी महला पंजवा घर पंजवा दुप देखो अंकार सतगुरु प्रसाद ऐसा

रूप अनुरूप मेरे कछ न बिचार्यो प्रेम ग्यो मोहे हर रंग पीन बेखो लालन पाठ बीच कोई अनुचिता हर के पचीन

बिन प्रीतम दर्शन देखन गो तारी मन आस रहौ सिमरो नाम निरंजन करते मन तन ते सब गिरवित नास पूर्ण पार ब्रह्म सुखदाते अविनाशी बिमल जाको दास संत प्रसाद मेरे पूर्व मनोरथ कर कृपा पेट गुणतास शांत सहज सुख मन उपजो कोड़ सूर नानक परगास टोडी महला पंजवा हर हर पतत पावन जे प्राण मान सो दाता अंतर दामी मन को पावन राहु सुंदर सुगड़ चतुर साब बेता हृदय दास निवास भगत गुण गावन निर्म रूप अनूप स्वामी करम भूम बेजन सो खावन विषम विषम पै विषमा दुसर लावन रसना सिमर सिमर दस दीवान नानक दास दा बल जावन टोटी महला पंजवा माई माया चल तृण की अगन में की छाया गोविंद भजन बिनाड़ का जल रहो छोड़ ध्यान बचत राय दो कर जोड़ साध मग चल सिमर स्वामी अंतर जामे मानक देखा हो उत्तम पल वेद बख्यान करत साधु जन सा भागहीन समझत न खल प्रेम भगत राचे जन नानक हर सिमरन दैन पै मल टोटी महला पंजवा माई चरण गुरु मिठे वडे भाग देवे परमेश्वर कोट भला दर्शन गुर डिठे राहो गुण गावत अचत अविनाशी काम क्रोध बिनसे मद ठीठे असर भय साच रंग रथ जन मरण बहर नहीं पीठे बिन हर भजन रंग रस जेते संत दयाल जाने सब झूठे नाम रतन बायो जन नानक नाम बहुन तलाय सब मुठे टोटी महला पंजवा सा संग हर हर नाम चितारा सहजन धोवै दिन राति अंकुर पलो हमारा रहो गुरपुरा पेटो बड़पागे जाको अंत न पारा बारा कर गया काल लियो जने अपना भिक्षागर संसारा जन्म मरण काटे गुरु वचने बहुन संकट द्वारा नानक शरण गाये स्वामी के पुनः पुनः नमस्कारा टोटी महला पंजमा माई मेरे मन को सुख कोट आनंद राज सुख भोगवै हर सिमरत बिन से सब दुख राव कोट जन्म के किलबकना से सिमरत पावन तन मन सुख देख स्वरूप पूर्ण पयासा दर्शन पेट त्युदरे भुख चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध काम तेन पार जात हर हर रुख नानक शरण गाय सो सागर जन्म मरण फिर बौ गर्भ नान तोख टोटी महला पंजमा हर हर चन हृदय और तारे सिमर स्वामी सतगुरु अपना कार्य सफल हमारे रहो पुन दान पूजा परमेश्वर हर कीर तत् विचारे गुण गावत तल सुख पाया ठाकुर अगम अपारे जो जन पार ब्रह्म अपने किन तिनका बौर कछ न बिचारे नाम रतन सुन जाप जाप जीवा हर नानक कंठ मजारे टोडी महला नौवा एको अंकार सतगुरु प्रसाद कायो कांपनी अदमाई और जो कन कामनी के रस न कीर्त प्रभ गाई रहो जग झूठे को साथ जान कहता सो रुचुप जाई दिन बन सिमरो नहीं कब होत जो संग सहाय मगन रे माया में निजन छूटी ना मन की काई कह नानक अब नाहि अनत गत बिन हर की शरणाई टोडी बाणी भगतां की को अंकार सतगुरु प्रसाद कोई बोले निर्वा कोई बोले दूर जर की माछुरी चरे खजूर कायर बकवाद लायो जिन हर पायो तिने छपायो राव पंडित होके वेद

राव राम संग नाम देव जन को प्रतक आई एकादशी व्रत रहे काहे को तीर्थ जाई भनत नाम देव सुकृत सुमत भय गुरुमत राम कह को न बैकुंठ गए तीन छंदे खेले अक्षय रहाओ कुम्भार के कर हांडी अक्षय राधा के कर सांडी गो बामन के कर रांडी अक्षय रांडी सांडी हांडी गो बाणी एक कर हिंग अक्षय पैसुर मथ सिंह गो देवल मद लीग अक्षय लीग सिंह हिग गो तेली के कर तेल अक्षय जंगल मद बेल गो माली के कर केल अक्षय केल बेल तेल गो संता मद गोविंद अक्षय गोकुल मद श्याम गो नाम मद राम अक्षय राम श्याम गोविंद गो राग बैराड़ी महला चौथा कर पहला दो पदे एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सुन मन अखत कथा हर नाम रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुख पावे बद गुरमत हर राम राम राव नाना ख्यान पुराण जस उत्तम खर दर्शन गावे राम शंकर क्रोड तेतीस त्यायो नहीं जान्यो हर मरमा सुर नर गण गंधर्व जस गावे सब गावत जेत पाम नानी कृपा करी हर जिन को ते संत परे हर राम बैराड़ी महला चौथा मान

अल्लाह चौथा जाप माने अरनी रंजन रंकारा सदा सदा हरताई सुखदाता जाका अंतन पारा बारा राहु अगन कुंट में उर्द लिवलागा राखे उधर मजारा सो ऐसा सेवो मेरे मन हरियंत चढ़ाबना हारा

मल्ला चौथा जाप मन हर नाम नित्य आये जो इच्छे सो ये पर पावे पर दुख न लागे आये राव सो जाप सो तप सा व्रत पूजा जित हर सो प्रीत लगाए बिन हर प्रीत होर प्रीत सब झूठी एक खिन में बिसर सब जाय तू बेअंत सर्व कल पूरा किस कीमत कही न जाए नानक सुन तुम्हारी हर दियो पावत वै छाए बैराड़ी महला पंजवा कर पहला इको अंकर सतगुरु प्रसाद संत जन मिल हर दस गायो कोट जन्म के दुख गवायो राव जो चाह सोई मन पायो कर कृपा हर नाम दिवायो

அலங்கார சத்குரு பிரசாத பௌத்திர பாங்க கலடி மிரச்சித் மே திவானா பயாத்தீத் கர்காசா தர்சன் கி பூக் மே தர்மாங்கோ நிதானீத் தோ தர்சன் கி கரோ சமாயே மே தர்மாங்கத் பிக்யா பாயே ராவுகே சம்கு சுமிர்கமே ஹரணா சர்வ சரீரி சரணா चंदन भगतां जोत अनेहि सर्वे परमल करना के पट पांडा कहन कोय असा भगत वरन में होए तेरे नाम निवे रहे लिवलाए नानक तिंदर पिक्या बाए तिलंग महला पहला करति जाय को अंकार सतगुरु प्रसाद एतन माया पाहे प्यारे लेचड़ा रब रंगाए मेरा कंत न पावे चोलड़ा प्यारे क्यों दन से जा जाए हूँ कुर्बान जाओ मेहरबाना हूँ कुर्बान जाओ हूँ कुर्बान जाओ तना के लैन जो तेरा ना हो तना के हूँ सर कुर्बान जाओ राहो काया रंगन जेतिया प्यारे पाइये नाओ मजीठ रंगन वाला जे

जो किच करे सो भला कर्मानी है एकमत हुकम चुकाई है जाके प्रेम पदार्थ पाइये तो चरणी चित लाइये सो कह सो कि जय तन मन दिजय सा परम लाइये एव कह सुहागणी भैने निभाते सो पाइये आप गवाइये ता सो पाइये और कैसे चुचराई सो नजर कर देखे सो दिन लेखे कामन नौ निज पाई अपने कंत प्यारी सा सुहागन नानक सा सुबराई अस रंग राति सह की माती है निज पाए सुमाणी सुंदर साय स्वरूप चखण कहिए सा सियाणी तिलंग महला पहला जैसे में आवे खसम के बाणी तैसरा करें ज्ञान में लालो पाप के जंजरा काबलू ताया जोरी मंगे दान में लालो सर्व धर्म दो चप खलोए कूड़ बरे प्रधान में लालो काजिया बामणा की गल थकी अगद बड़े सैतान वे लालो मुसलमानिया पड़े कते पा कस्तमे करे खुदाए वे लालो जात सनाती होर इंदवाणी ए पी लेखे लाए वे लालो खून के

अगमगाधोच अपार ज्योत सेवा तिनको दुख नाहे गुरु प्रसन्न गुण गाहे जो दिशा सो तेरा रूप गुण दान गोविंद अनूप सिमर सिमर सिमर जन सोए नानक करम प्राप्त होए जिन जपया तिसको बलिहार तिसके संग तर संसार को नानक प्रवलोच पूर संत जना की बाछ तूर तिलंग महला पंजमा कर तीजा मेहरबान साह मेहरबान साह मेरा मेहरबान जी सगल को दे दान रहाओ तू काहे डोले प्राणिया तुद राखेगा सृजनहार जिन पदाय तू किया सोई दे आधार जिन उपाय मेद नहीं सोई करदा स्वार

ऐसा तुम सम्राट आकाश गोत दियो पिंड तरी रास राम तरी सुख पाया सद नानक की अरदास तिलंग महला पंजमा करती जा करते कुदरती मुस्ताक दीन दुनिया एक तो ही सब खल के ही ते पाक रहो किन में थाप थाप दा आचरद तेरे रूप कौन जाने चलत तेरे अंधेरे में दीप खुद खसम खलक जहान अल्लाह मेहरबान खुदाए दिन सरण जे तो दर आराधे सुख दो जग जाए अजराइल यार बंदे जिस तेरा आधार गुना उसके सब लिया फूं तेरे जन देखे दीदार दुनिया चीज फिर हाल सगले सच सुख तेरा नाव गौर मिल नानक बुझिया सदा एकस गाओ तिलंग महला पंजवा मीरा दाना दिल सोच मोहब्बते मंदन बसे सच सा बंदी मोच राव दीद ने दीदार साहेब कच नहीं इसका मोल पाक परवदगार तू खुद खसम वड्डा आतोल दस गिरी दह दिलावर तू ही एक करतार कुदरत करण खालक नानक तेरी टेक तिलंग महला पहला कर दूजा

पंत बताए हुकम बचाने नानका पहुंचन धन लावे गुण कामण कामण कराए तो प्यारे को पावे जो दिल मिलिया सो मिल रहा मिलिया कहिए रसोई जो जे बो तेरा लोचिए बाती मेल ना होई।

चाण अप्योपी वे जो नानिका परम परम समाव सहजे सहजे मिल रहे ममरा पद पाव तिलंग महल्ला चौथा हर किया कथा कहानिया गुरमीत सुनाइया बलिहारी गुर अपने गुर को बल जाइया आए मिल गुर सिख आए मिल तू मेरे गुरु के प्यारे रहो हर के गुण हर पाम दे से गुरु ते पाए जिन गुर का पाणा मन्या तिन कोम कोम जाए जिन सतगुरु प्यारा देखिया तिन को हों वारी जिन गुर की चा करे तिन सत बलिहारी हर हर तेरा नाम है दुख मेटन हारा गुरु सेवा ते पाई है गुरमुख ने चारा जो हर नाम ते आइंदे ते जन परवाना

0: नामे च स्वामी बख्शंद तू हरि हल्ले यारा खुश खबरी बल बल जाओ बल बल जाओ निकी तेरी बेगारी आले तेरा नाओ राओ कुजा यामन कुजा रवते कुजा मैं रवि द्वारका नगरी रास भगोई खूब तेरी पगरी मिठे तेरे बोल द्वारका नगरी काय के मंगोल चंदे हजार आलम एकलकाना मिचने पाचा सामले बरना यस पत गजपत नर नरेंद्र नाम के स्वामी मीर मकंद एक अंकार सतनाम
1: काल मूरत राजुनी सहभंग गुर प्रसाद राग सुही महला पहला चौबदे कर पहला भांडा धोए बैस धूप देवो तो दूध कौ जाव दूध कर्म फुन सुरत समाए न होए निरास जमाव जपो ताए को नाम अवर निराफल कामा रहा अवर निराफल कामा रहा हेहो मन ईटी हाथ करो फुन नेत्रों नींद न आवे रसना नाम जप तब मथिए इन विधि अमृत पाव मन संपट जित सत सरनावन भावन पाती तृप्त करे पूजा प्राण सेवक जे सेवेन बिद साहिब रवत रहे कहंदे कहे कहे कहे जावे तुम सर्यवरना कोई भगतहीन नानक जन जंपे हौं सालाही सच्चा सोही हौं सलाही सच्चा सोई सोही महला पहला घर दूजा एको अंकार सतगुर प्रसाद अंतर वसै ना बाहर जाए अमृत छोड़ काहे बिख खाए ऐसा ज्ञान जप मन मेरे हो बहु चाकर साचे केरे रहा ज्ञान ध्यान सब कोई रवै बांधन बांधयान सब जग पवै सेवा करे सो चाकर होए जल थल महिल रव रहा सोए हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए प्रणवत नानक तारे सोए सोही महला पहला घर छेवा एको ओंकार सतगुर प्रसाद उजल कहे चलकनाव कोट मकालड़ी वास धोत्या झूठ ना उतरे जिस तो वै तिस सज्जन से ही नाल मैं चलद्या नाल चलन जिथे लेखा मंगी है तिथे खड़े दिसान रा कोठे मंडप माड़िया पासों चितवी चितवीया टठिया कामनया बनी विचों सखणिया बग्गा बग्गे कपड़े तीर्थ मंज वसान घुट घुट जिया कामणे बग्गे ना कही अन सिमल रुख शरीर मैं मैजन देख भुलन सिफल कामन आवनी ते गुण मैं तन हन अंदले पारे उठाया डूंगर वाट बहुत अखीं लोड़ी ना लहा हों चढ़ लंगा केत चाकरियां चंगे आई आवर सियाणप केत नानक नाम संभाल तू बद्दा छुटे जित सुही महला पहला जप तप का बंद बेड़ला जित लंगे वाहेला ना सरवरना उछल ऐसा पंथ सुहेला तेरा को नाम जीठरा रता मेरा चोला तेरा एको नाम मजीठड़ा रता मेरा चोला साद रंग ढोला रा सजन साजन चले प्यारिया क्यों मेला होई जे गुण होवन गंठड़ी है मिलेगा सोई मिलया होए ना विछड़े जे मिलया होई आवा गुण निवारिया है साचा सोई होमे मार निवारिया सीता है चोला गुर सब बचनी सब गुर बचनी फल पाया सह के अमृत बोला नानक कहे सहेलियो सहु खरा प्यारा हम सह केरिया दासिया साचा खसम हमारा सुही महला पहला जिन कौ भांडे पाओ तिना सुबारसी सुखी करे पसाओ दुख वसारसी सहसा मूले नाहे सरपरतारसी तिन मिलया गुर आए जिन को लिखिया अमृत हर का नाउ देवे दिखिया चाले सतगुर पाए पवे ना पीखिया जा को महल हजूर दूजे नवे किस दरदर वाणी नाहे मूले पुछते स छूटे तां के बोल छूटे तां के बोल साहेब नदर जिस कले आने आप जिस नाही दूजा मते कोई ढायो सारे साज जाने सब सोए नानक नाओ नानक बगसीस नदरी कर्म होए सुही महला पहला पांडा हछा सोए जो तिस पावसी पांडा आत्मलीन तोता अच्छा ना होए सी गुरु द्वारे होए सोजी पाए सी एत द्वारे तोए हछा होए सी मैले हछे का विचार आप वरताए सी मत को जाने जाए अगे पाए सी जे कर्म कमाए तिहा हुए सी अमृत हर का नाओ आप वरताए सी चलिया पात स्यों जन्म सुवाद वाजा वाए सी मानस क्या विचारा ते लोग सुनाए सी नानक आप निहाल सब कुल तार सी सुही महला पहला जोगी होवे जोग वै भोगी होवे खाए तपिया होवे तप करे तीर्थ मल मल नहाए तेरा सदड़ा सुनिजे भाई जे को बहे अलाई रहा जैसा बीजे सोलने जो खटे सो खाए अगे पुछ ना हो वही जे सण निसाण जाए तैसो जैसा काढ़िए जैसी कार कमाए जो दम चेतन आवई सो दम बिरथा जाए हो तन बेची बै करी जे को लय विकाए नानक कम न आवई जित तन नाही सच्चा नाओ सुही महला पहला घर सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद जोग न खिंथा जोग न डंडै जोग न भस्म चढ़ाइए जोग न मुंदी मुंदी मूंड मुंडाए जोग न सिंगी वाइए अंजन वाहे निरंजन रहिए जोग जुग तेव पाइए गली जोग न होई एक दृट कर सम सर जाने जोगी कही है सोई रहा जोग ना बाहर मड़ी मसानी जोग ना हाथाड़ी लाई है जोग ना देश दसंतर पवे है जोग ना तीर्थ नाई है अंजन वाहे निरंजन रही है जोग जोग तिव पाई है सतगुर भेटे तां सही सा तूट तावत वरज रहाइए निजर जरे सहज धुन लागे कर ही परचा पाई है अंजन महे निरंजन रही है जोग जोग तिव पाई है नानक जीव त्या मद रही है सा जोग कमाईये वाजे बाजो सिंगी वाजे तो नृपो पद पाई है अंजन महे निरंजन रही है जोग जोग तौ पाई है सुही महला पहला कौन तुराजी कवन तुला तेरा कौम कमन सुराफ बुलावा कौन गुरु कै पह दिखया लिवा के पह मुलक रावा मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना तू जल थल मैयल पर पुर लीना तू आपे सर्ब सुमाना रहा मन तरा जी चेत तुला तेरी सेव सुराव कुमावा कटी पीतर सो सो तोली अनबित चेत रहावा आपे कंडा तोल तुरा जी आपे तोलन हारा आपे देख आपे बूझे आपे है वन जा रंदला नीच जात पर देसी आवे तिल जावे ताकि संगत नानक रहदा क्यों कर मूड़ा पावे राग सुही महला चौथा कर पहला एको अंकार सतगुर प्रसाद मन राम नाम अराध्या गुर शब्द गुरु गुर के सब इच्छा मन तन पूरिया सब चूका डर जम के मेरे मन गुण गावो राम नाम हर के गुर तुठे मन पर बोध यार पिया रस गटके रहा सत संगति उत्तम सतगुर केरी गुण गावे हर प्रभ के हर कृपा धार मेलो सत संगत हम धोवे पाग जान के राम नाम सब जग है राम नाम सब है राम नामा रस गुरमत रस रस के हर अमृत हर जल पाया सबलाथी तिस तिस के हमरी जात पात गुर सतगुर हम बेचियो सिर गुर के जन नानक नाम परियो गुर चेला गुर राखो लाज जन के सुही महला चौथा हर हर नाम भजियो परखो तमा सब बिन सह दाल दलका भाव जन्म मरना मिटियो गुर बसबदी आर्य अस्तर सेव सुख सुमगा मेरे मन भज राम नाम अत बिरगा मैं मन तन अर्प धरियो गुर आगे सिर वे चलियो मुल महगा रहा नरबत राजे रंग रस माने बिन नावे पकड़ खड़े सब कलगा धर्म राय सिर डंड लगाना फिर पछताने हाथ फलगा हर राख राख जन किरम तुम्हारे शरणागत पुरख प्रतफलगा दर्शन संत देव सुख पावे प्रभलोच पूर जन तुमगा तुम समरथ पुरख वड्डे प्रभ स्वामी मुख कीजे दास अरनुगा जन नानक नाम मिले सुख पावे हम नाम विटो सद घूमगा सुई महला चौथा हर नामा हर रंग है रंग मजीठे रंग गुर तुठे हर रंग चाढ़िया फिर बोड़ ना होई भंग मेरे मन हर राम नाम हर रंग गुर तुठे हर उपदेश हर भेट्यो राव न संग राव मोंदे आनी मन मुखी फिर आवन जाना हर प्रभ चेतन आयो मन दूजा पाओ सलांग हम मैल परे दुचारी हर राखो अंगी अंग हर राखो अंगी अंग गुर अमृत सर नवाले आ सब लाथे किल विख बाज हर दीना दीन दयाल प्रभ शरणागत मिलो संग मिल संगत हर रंग पाया जन नानक मन तन रंग सुई महला चौथा हर हर करे नित कपट कुमावे हिरदा सुध ना होई अन दिन कर्म करे बहु तेरे सुपने सुख ना होई ज्ञानी गुर बिना भगत ना होई कूरे रंग कदे ना चढ़े जे लोचे सब कोई राव जब तक संयम वर्त करे पूजा मन मुख रोग न जाई अंतर रोग महाव्याना दूजे भय खुआई बार भेख बहुत चतराई मनुआ दै दिसतावे होमे व्यापिया शब्द न चीनै फिर जूनी आवे नानक नदर करे सो बूजै सो जन नाम त्याए गुर प्रसादी एको बूजै एक समाए समाए सुही महला चौथा कर दूजा एको ओंकार सतगुर प्रसाद गुरमत नगरी खोज खुजाई हर हर नाम पदार्थ पाई मेरे मन हर हर सांत वसाई तिस नागन बुझी खेने अंतर गुरमिले सब भुख गवाई रहा हर गुण गावा जीवा मेरी माई सतगुर दयाल गुण नाम गिरडाई हों हर प्रभ प्यारा ढूंढ टुंडाई सत संगत मिल हर रस पाई तुर मस्तक लेख लिखे हर पाई गुरु नानक तुठा मेले हर पाई सुही महला चौथा

मन रंग माने सदा आनंद रहे दिन राती पूरे गुर के शब्द सुमाने राउ हर रंग को लोचे सब कोई गुरमुख रंग चलूला होई मन मुख मुगदा नर कोरा होए जे सौ लोचे रंग ना होवे कोए नदर करे ता सतगुर पावे नानक हर रस हर रंग सुमावे सुही महला चौथा जेवा हर रस रही अगाए गुरमुख पीवे सहज सुमाए हर रस जन चाखो जे भाई तौ कत अनत साध लुभाई राउ गुरमत रस राखो रतार हर रस राते रंग मुरार मन मुख हर रस चाखिया जन जाए मन मुख हर रस चाखिया न जाए होमे करे बहुती मिले सुजाए नदर करे ता हर रस पावे नानक हर रस हर गुण गावे सुई महला चौथा कर छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद नीच जात हर जपते आ उत्तम पदवी पाए पुछो बिदर दासी सुतए किसन उतरिया घर जिस आए हर की अकथ कथा सुनो जन भाई जित सहिसा दुख भूग सब लह जाए राव रविदास चमार उस्तत करे हर कीरत निमख एक गाए पतत जात उत्तम भया चार वर्ण पय पग आए

कहे बुलाए। खत्री ब्राह्मण पेठ दे छोड़े हर नाम देओ लिया मुख लाए। जितने भगत अर सेवका मुख अड़सठ तीर्थ तिन तिलक कढ़ाए। जन नानक तिन को अन दिन परसे जे कृपा करे हर राय। सुई महला चौथा तिन यंत्र हर अराध्या जिन को तुर लिखया लिखत लीलारा। तिन की बखीली कोई क्या करे जिनका अंग करे मेरा हर करतार। हर हर त्याए मन मेरे मन त्याए हर जन्म जन्म के सब दुख निवारण हारा रा। हर हर त्याए मन मेरे मन त्याए हर जन्म जन्म के सब दुख निवारण हारा रा। तुर भगत जना को बख्शिया हरे अमृत भगत भंडारा। मूर्खो वे सोन की रीस करे तिस हलत पलत मुहकारा। से भगत से सेवका जिन्ना हर नाम प्यारा। तिन की सेवा ते अर पाईए सिर निंदक के पवे इशारा। जिस घर विरती सोई जाने जगत गुरु नानक पूछ करो बिचारा। चौ पीढ़ी आदि जुगाद बखीली कने ना पाए हर सेवक पाए निस्तारा। सुही महला चौथा जिथे हर अराधी है तिथे हर मित सुहाई। गुर कृपा ते हर मन वसे होर ते बिद लया ना जाई। हर हर हर धन संचिए पाई जे अलत पलत हर होए सुखाई रा। सत संगती संग हर तन खटी है होरत है होरत उपाय हर तन किते ना पाई। हर रत्ने का व्यापारिया हर रत्न धन विहाजे कच्चे के व्यापारिये वा कर तन लया ना जाई। हर तन रत्न जवे हर मान हर तन्ने नाल अमृत वेले वते हर भगती हर लिव लाई। हर धन अमृत वेले वते का बीजिया भगत खाए खर्च रहे ने खुट नाही। हलत पलत हर तन्ने की भगता को मिली वड्याई। हर धन निरभउ सदा सदा अस्त्र है साचा। यो हर धन अग्नि तस्कर पानी है जिम दूते किसे का गवाया न जाई। हर धन को चौका नेड़ने आवी जम जगाती डांड ना लगाई। सागती पाप करके बिखिया धन संचया तिना एक विख नाल ना जाई। हलते विच सागत दुहिले पए हथों छुड़क गया। अगे हलत अगे पलत सागत हर दर गए ढोई ना पाई। इस हर धन का शाहो हर आप है संतो जिसनु दे सो हर धन लद चलाई। इस हर धन्य का तोटा कद न आवई जन को गुर सोजी पाई। सुही महला चौथा जिसनु हर सो प्रसन्न होए सो हर गुणा रवे सो भगत सो परवान। तिस की महिमा क्या वरनी है जिसके हृदय वसे हर पुरख भगवान। गोविंद गुण गाइए जियो लाए सतगुरु नाल ध्यान राम। सो सतगुरु सो सेवा सतगुरु की सफल है जिसनु पाईए परम निधान। जे दूजे पाए सागत कामना अर्थ दुर्गंध सुरेवंदे सो निफल सब अग्ञान। जिसनु प्रतीत होवे तिसका गावे थाए पवे सो पावे दरगे मान। जो बिन प्रतीति कपटी कूड़ी कूड़ी अखी मीट दे उनका उत्तर जाएगा झूठ गुमान। जेता जियो पिंड सब तेरा तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कहे जन नानक जेहा तू कराहे तेहा हों करी वखियान। सुही महला चौथा कर सतवा एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद। तेरे कवन कवन गुण कहे कहे गावा तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा वर्ण न साकू तू ठाकरी उच भगवाना। मैं हर हर नाम तर सोई ज्यों भावे त्यों राख मेरे साहिब। मैं तुझ बिन अवरना कोई रा। मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी। मैं तुझ आगे अरदास
मैं होर थाओ नाही जिस पै करो बेनंती मेरा दुख सुख तुझ ही पास विचे धरती विचे पानी विच काष्ट अगन तरीजे बकरी सिंह कितै थाए राखे मन हर जाप भरम पर दूर की जाय हर की वडियाई देखो संतो हर निमाणिया मान दिवावे ज्यों धरती चरण तले ते उपर आवे त्यों नानक साध जना जगत आन सब पैरी पाए सुही महला चौथा तू करता सब किछ आपे जाने क्या तुद पयाग सुनाइए बुरा भला तुद सब किछ किछ सूझै जे हा को करै ते हा को पाईए मेरे साहिब तू अंतर की बिद जाने बुरा भला तुद सब के सूझै तुद आपै है ज्यों तुद भावे तिवें बुलावै राम सब मो माया शरीर हर किया विच देही मानुख भगत कराई इक ना सतगुर मेल सुख देवे एक मनमुख धंद पिटाई सब को तेरा तू सबना का मिर करते तुद सबना सिर लिखिया लेख जेही तू नदर करे तिहा को होवै बिन नदरी नाही को भेख तेरी वडियाई तू है जाने सब तुदनु नित सियाए जिसनु तुद भावे तिसनु तू मेलै जन नानक सो थाए पाए सुई महला चौथा जिनके अंतर वसिया मेरा हर हर तिनके सब रोग गवाए ते मुक्त पै जिन हर नाम ते आया तिन पवित परम पद पाए मेरे राम हर जन अरोग पै गुरबचनी जिन्ना जपया मेरा हर हर तिन के हों में रोग गए राव ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रै गुण रोगी विचों में कार कमाई जिन किए तिसे न चेते बपड़े हर गुरमुख सोजी पाई हों में रोग सब जगत व्यापिया तिन को जन्म मरण दुख भारी गुरप्रसादी को विरला छूटे तिस जन को हों बलियारी जिन सिट साजी सोई हर जाने तांका रूप अपारो नानक आपे वेख हर बिगसे गुरमुख ब्रह्म विचारो सुही महला चौथा कीता करना सरब रजाई किछ कीचे जे कर सकिए गुरमुख ब्रह्म कीता करना सरब रजाई किछ कीते जे कर सकिए अपना कीता किछु ना होवे ज्यों हर पावे त्यों रखिए मेरे हर जियो सब को तेरे वस असा जोर नाहीं जे किछ कर हम साकै ज्यों पावे तिवें बख्श राव सब जियो पिंड दिया तुद आपे कारे लाया जिहा तू हुक्म करें ते को कर्म कमावे जिहा तुद तुर लिख पाया पंच तत् कर तुद सिट सब साजी कोई छेवा करो जे किछ कीता होवे इक ना सतगुर मेल तू बजावे एक मनमुख करे से रोवे हर की वडियाई हों आख ना साका हों मूर्ख मुगद नीचान जन नानक को हर बख्श लय मेरे स्वामी शरणागत पया अजान शरणागत पया अजान राग सुही महला पंजवा घर पहला एको अंकार सतगुर प्रसाद बाजी कर जैसे बाजी पाई नाना रूप भेख दिखलाई सांग उतार थम्यो पासारा तब एक अंकार कवन रूप दृतायो बिनसायो कत है गयो कत ते आयो राव जल ते उठे अनक तरंगा कनक पूखन कीने बहु रंगा बीज बीज देखियो बहु परकारा फल पाके ते कंकार सैस कटा में एक आकाश घट फूटे ते ओही परगास परम लो मो माया विकार भ्रम छूटे ते कंकार ओ अविनाशी बिन सत नाही ना को आवे ना को जाही गुरपुरे होमे मल धोई कहो नानक मेरी परम गत होई सुही महला पंजवा कीता लोड़े सो प्रभ हुए
तुद तुज बिन दूजा नाही कोए जो जन सेवे तिस पूरन काज दास अपने की राखो लाज तेरी सरना पूरन दयाला तुज बिन कवन करे प्रतपाला राव जल थल मैयल रहा भरपूर निकट वसे नाही प्रभ दूर लोकपति आरे कछु ना पाईए साच लगे ता हमें जाइए जिसनु लाए लाए सो लागे ज्ञान रतन अंतर तिस जागे दुर्मत जाए परम पद पाए गुर प्रसादी नाम ते आए दुए कर जोड़ करो अरदास तुद पावे ताए आने रास कर कृपा अपनी भगती लाए चन नानक प्रभ सदा ते आए सुही महला पंजमा धन सुहागण जो प्रभु पछाने माने हुक्म तजे अब माने जी प्रयो स्यो राती रलिया माने सुन सखिए प्रभ मिलन निशानी मन तन अर्प तज लाज लुकानी राम सखी सहेली को समझावे सोई कमावे जो प्रभ भावे सास सुहागण अंक समावे गर्भ गहली मैल ना पावे फिर पछतावे जब रहन विहावे कर्महीन मन मुख दुख पावे बिनो करी जे जाना दूर प्रभ बनासी रह भरपूर जन नानक गावे देख दूर सुही महला पंजवा ग्रह वस गुर की नाह कर की नार दस दासी कर दीनी पतार सगल समगरी मैं कर की जोड़ी आस प्यासी फिर को लोड़ी कवन कहा गुण कंत प्यारे सुगुण स्वरूप दयाल मुरारे राव तिस सिंह सत सिंगार पंजन पाया अमृत नाम तुम बोल मुख खाया कंगन वस्त्र गहने बने सुहावे धन सब सुख पावे जा पेर घर आवे गुण कामन कन कर कंत रिजाया वस कर लीना गुर भरम चुकाया सब ते उच्चा मंदर मेरा सब कामन त्यागी प्रयो प्रीतम मेरा प्रगटिया सो सूर ज्योति उजियारा सेज विछाई सरदे अपारा नव रंग लाल सेज रावण आया जन नानक पिर धन मिल सुख पाया सुही महला पंजवा मिलन प्रभ तो ताई होयत चरियो देखो प्रो जाई सुनत संदेश दे सरो प्रो ग्रह सेज विछाई परम परम आयो तो नदर न पाई किन बिद हीरो धीरे नी मानु मिल साजन तुझ कुरबानु राव एका सेज विछी तन कंता तन सुती पिर सत जागंता पियो मधुरो धन मतवंता धन जागे जे पेर बोलंता पई नरासी बहुत दिन लागे देस संतर मैं सगले चागे खेन रह न पावो बिन पग पागे होए कृपाल प्रभ मिलो सुभागे भयो कृपाल सतसंग मिलाया बूझी तबत करे पिर पाया सगल सिंगार हुण मुझे सुहाया कहो नानक गुर भरम चुकाया जय देखा तै पिर है पाई खुल्यो कपाट न मन ठहराई खुल्यो कपाट ता मन ठहराई राव दूजा सुही महला पंजवा क्या गुण तेरे सार संभाली मैं निर्गुण के दातारे बै खरीद क्या करे चतराई जियो पिंड सब थारे

सा कूड़े मूर्ख की आठी सारा पेख दिखावे सच ना कमावे कह तो महली निकट न आवे अतीत सदाए माया का माता मन नी प्रीत कहे मुख राता कहो नानक प्रभु सुनीजे कुचल कठोर कामी मुक्त की जे दर्शन देखे की वडियाई तुम सुख दाते पुरख सो भाई रहा दूजा सुही महला पंजवा बुरे काम को उठ खलोया नाम की बेला पै पै सोया अवसरे अपना बुझे ना आना माया मो रंग लपटाना रहा लोभ लहर को बिकस फूल बैठा साध जना का दर्शन दीठा कबू ना समझे अगे आन गवारा बौर बौर लपटो झंझार रहा बिखे नाद करण सुन पीना हर जस सुनत आलस मन की ना दिठ ना ही रे पेख ते अंधे छोड़ जाए झूठे सब धंधे राव कहो नानक प्रभ बख्श करी जय कर कृपा मुहे साध संग दी जय तो किछ पाइए जो हो ये रे ना जिसे बजाए तिस नाम लेना रहा ओ सुही महला पंजवा घर में ठाकर नदर न आवे गल मह पान लह लटकावे पर में पूला सागत फिरता नीर बरोले खप खप मरता रहा जिस पान को ठाकर कहता ओ पान ले उसको डुबता गुणे गार लूण हरामी पान नाव पार ग्रामी गुरमिल नानक ठाकर जाता जल थल मैयाल पूर्ण बेदाता सुही महला पंजवा लालन रावे अकमन गति दी सखी बताव मुझे मतीरी सुहूब सुहूब सुहावी अपने प्रीतम के रंग रती राव पाम लोव संग नैन पतीरी जहां पठावो जाओ ततीरी जब त संयम देव जतीरी एक निमख मिलावो मोहे प्राण पतीरी मान तान अहबुध हतीरी सा नानक सुहगा तीरी सुही महला पंजवा तू जीवन तू प्राण अधारा तुझी पेख पेख मन सधारा तू साजन तू प्रीतम मेरा तिचते न बिसचित न बिसरे काहू बेरा रा बै खरीदा हों दास रो तेरा तू भारो ठाकर गुणी गहेरा कोट दास जाके दरबारे निमख निमख वसे तिन काल नाले हों किछ नाई सब किछ तेरा उत्पोत नानक संग बसेरा सुही महला पंजवा सूख महल जाके ऊच दुआरे ता मैं वासे भगत प्यारे सज कथा प्रभ की अत मीठी विरले काहू नेत्रों डीठी रा

अमृत वरखा। गोहज कथाए गुर ते जानी, नानक बोले हर हर बानी। सुही महला पंजवा, जा कै दरसु पाप कोटि उतारे। पेट दसांग उपव जल तारे, ओ साजन ओ मीत प्यारे। जो मोको हर नाम चितारे राम, जाका शब्द सुनत सुख सारे। जा की टहल जम दूत बिदारे, जा की धीर कह समने सधारे। जा के सिमरन मुख उजलारे, प्रभु के सेवक प्रभ आप सवारे। शरण नानक तिन सद बलिहारे। सुही महला पंजवा, रैन ना पावे सुर नर देवा। ऊठ सुधारे कर मुन जन सेवा, जीवत पेखे जिनी हर हर त्याया। साध संग तिनी दर्शन पाया रा।

सुख सहज मन आवै सांत, सतगुर की देना वडभागी पावे, नानक गुर कौ सद बल जावे। सुही महला पंजवा, गुर अपने उपर बल जाइए, आड़ पैर हर हर जस गाइए, सिमरो सो प्रभ अपना स्वामी, सगल घटा का अंतर जामी रहा। चरण कमल स्यों लागी प्रीत, साची पूर्ण निर्मल रीत, संत प्रसाद वसे मन माही, जन्म जन्म के किल विख जाही। कर कृपा प्रभ दीन दयाला, नानक मांगे संतर वाला। सुही महला पंजवा, दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा, ए बनंती सुन प्रा मेरे, देह नाम कर अपने चेरे राम।

डोलाया गुरु ते आए हर चरण मन चीने तांते करते अस्त्र कीने राम गुण गावते अचुत बनासी तांते काटी जमकी फासी कर कृपा लीने लड़लाए सदा आनंद नानक गुण गाए सुही महला पंजवा अमृत बचन साध की बाणी जो जो जपै तिस की गत होवै हर हर नाम नित रसन बखानी रा कली गाल के मड़े कले साय को ना मन में प्रवेशा साधु धूर मुख मस्त कलाई नानक उदरे हर गुर सरनाई सुही महला पंजवा घर तीजा गोविंदा गुण गाओ दयाला दर्शन देहो पूर्ण कृपाला राव कर कृपा तुम ही प्रतपाला जियो पिण सब तुमरा माला अमृत नाम चले जप नाला नानक जांचे संतर वाला

संग परिया हर दुआरे खरिया दर्शन करिया नानक गुर मिरिया बहुरना फिरिया सुही महला पंजवा रास मंडल कीनो आकारा सगलो साज रखियो पा सारा रा बहु विध रूप रंग अपारा पिखे खुशी भोग नहीं हारा सब रस लैत बस्त निरारा वर्ण चेन नाही मुख ना मासारा कहरन जाई खेल तुहारा नानक रेन संत चरणारा सुही महला पंजवा तौ मैं आया सरणी आया भरोसे आया कृपा आया ज्यो भावे त्यों राखो स्वामी मार्ग गुरे बठाया रा महादुतर माया जैसे पवन चलाया सुन सुन ही डराया रहो धर्म राया ग्रह अंध कूपाया पावक सगराया गही ओढ़ सदाया नानक कर त्याया मैं पूरा पाया राग सुही महला पंजवा कर छेवा एको अंकार सतगुर प्रसाद सतगुर पास बेनंती आ मिले नाम उदारा तुठा सच्चा पातशाह तब गया संसारा भगतां की टेक तू संतां की ओढ़ तू सच्चा सृजनहारा रा सच तेरी समगरी सच तेरा पा दरबारा सच तेरे खजीने आ सच तेरा पसारा तेरा रूप अगम अनूप तेरा दरसारा हों कुरबाणी तेरिया सेवका जिनर नाम प्यारा सबे इच्छा पूरिया जा पाया गम्य पारा गुरु नानक।

अगम अगोचर लाखी उपारा चिंता करो हमारी। चल थल मही अल पर पुर लीना कट कट जोत तुम्हारी। सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी मंदिर शावा तेरे। तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहेबा गुण गावा नित तेरे। जी जंत सब शरण तुम्हारी सर्ब चिंत तुद पासे जो तुद भावे सोई चंगा। एक नानक की अरदासे बुलावल महला पहला। आपे शब्द आपे निशान आपे सुरता आपे जान आपे कर कर वेखै तान तू दाता नाम परवान। ऐसा नाम निरंजन देओ हौ जाचक तू अलखे अपिओ रहा। माया मोत्र कटी नार भूडी कामण कामण यार राज रूप झूठा दिन चार ना मिले चानने अंधियार। झख छोडी सहसा नहीं कोए बाप दिसे वे जात ना होए। एके को नाही पौ कोए करता करे करावे सोए। शब्द मुए मन मन ते मारिया ठाकरे मन साचे धारिया। अवरना सूजे गुर को वारिया नानक नाम रते निस तारिया। बुलाबल महला पहला।

तब कोई करो दिखाव खियाना। आपे गुर चेला है आपे आपे गुणी निधाना। ज्यो आप चलाए तिवै कोई चालै ज्यो हर पावे भगवाना। कहत नानक तू सच तू साचा साहिब कौन जाने तेरे कामा। एक ना कर मैं देह वड्याई एक भरम पवे अभमाना। एक ना कर मैं देह वड्याई एक भरम पवै अभमाना। बलावल महला तीजा। पूरा थाट बनाया पूरे वेखो एक समाना। इस परपंच मैं साचे नाम की वड्याई मत को धरो गुमाना।

आई अचिंत नाम बसिया मन आई हौ में माया शब्द जुलाई दर साचे गुर ते शोभा पाई जगद।

मन की प्रतीत मन ते पाई पूरे गुर ते शब्द बुझाई जीवन मरण को समसर विख बौड़ ना मरे ना जम पिख कर ही मैं सब कोट निदान सतगुर दिखाए गया अभिमान सद ही लागा सहज ते आनन दिन गावे को नाम इस युग में वडियाई पाई पूरे गुर ते नाम ते आई जय देखा तै रहा समाई सदा सुख दाता कीमत नहीं पाई पूरे पाग गुरपुरा पाया अंतर नाम निदान दिखाया गुर का शब्द अत मीठा लाया नानक त्रिसन बुझी मन तन सुख पाया राग बिलावल महला चौथा घर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद उद्यम मत प्रभ अंतर जामी ज्यों परे रे त्यों करना ज्यों नटुआ तंत बजाए तंती त्यों वाजे जंत जना जप मन राम नाम रसना मस्तक लिखता लिखे गुर पाया हर हिरदे हर बसना रहा माया ग्रस्त परम तह प्राणी।